0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ इंस्पायर FM, द टाइम इज नाउ 10 o'clock।

प्यारे सामीन कराम, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम हैं, सरापाए करम हैं, सरापाए लुत्फ़ व अनायत हैं। हम गुनाहगारों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त का ये आलम है कि हमारी ख़ताएँ ज़्यादा हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और मोहब्बत इससे कहीं बढ़कर है। आज की यह खूबसूरत नात इसी एहसास मोहब्बत का इज़हार है कि ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, मुझ पे करम करते गए, मेरी खता देखी नहीं।

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
1: मेरे हर एक राज से आशना तू है, मेरे दर्द की या मालिक दवा तू है, तेरे करम ने मुझको जीना सिखा दिया, मेरी चलती हुई नैया का ना खुदा तू है, हर जगह तेरी कुदरत नज़र आ रही है, सारी दुनिया से फिर भी जुदा तू है, तेरा जिक्र मकान से ला मकान तक है, इब्तदा तुझसे और इंतहा तू है, ये जहां फ़ानी है ये मकान फ़ानी है, हर शय फना मगर बका तू है, अपनी करीमी के सदके निर्दोष को बख्श देना, मैं बंदा हूँ तेरा और खुदा तू है। समीन करम, ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आप भी हमारी इस बज़म का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आवाज़ में हमद नातिया सुफियाना कलाम दूसरों की समातों की नज़र कर सकते हैं। डायल कीजिए 01582 48 1822 या व्हाट्सएप कीजिए 0777948182 पे और सुनते रहिए इंस्पायर FM 105.1।

0: 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
1: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Explore local nature trails and hiking paths, unplugging from the city grid to marvel at Allah's creation while getting an intense leg workout. Thanks for tuning in and keep listening for more only on Inspire FM.
2: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
3: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001234@court.org.uk।
4: اعتدال، حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی۔ آئیے اور سنیے حق کی آواز۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز، ہر سوموار 11 سے 12 تک، اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔
5: From the studios of Inspire FM, the time is now 4:30.